0: पिता ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग

0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: युनाइटेड अस्पताल बारदिंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लागी थप नया सुविधा
2: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आंद्रा को समस्या कलेजो थाइराइड र मधुमेह सहित का रोग पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हाड़ जोड़नी नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हाड़ जोड़नी संबंधी समस्या हड्डी भाँचिएको रडहरु राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
3: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी हर्निया एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन स्तनमा गाँठागुठी फोका घाउ पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजे सम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
4: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ
3: सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी हर्निया

0: आपके जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: नमस्कार, आप इतना घड़ी सामुदायिक रेडियो बुद्धा आवाज के संग्री राहुल दाइडवा। इस समय हो थारू गीत संगीत के, आप इस समय में थारू गीत संगीत सुन सकल जाए।

0: एयरटेल पैक किन लीजिए। जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी।
1: कैश फिर तक ले लीजिए।
0: एनसेल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई। एनसेल नेपाल के लग।

0: मेगा आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: कि जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी छ रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई
1: बड़ा नीक लागे सखी अजूरिया में गाँव।

0: अब जाए के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब दे लेके चली जाओ।
0: वो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप डस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ डस लीस बिटिया?
2: यही दही दे, दे, दे, दे, हाथ में डस लीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का सांप डस लीस। अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप डस लीस की काओ।
3: ना घबराओ जाए काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: वो तो है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चुरिया खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गह मोहरा लाई के सपुआ डस लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए, तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे पड़ा। हाँ लियो snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरिन के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आ गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जात है।
1: जी वो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जात है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाए सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: सुन्नु न
8: भन न भन
7: चाडबाडहरू पनि नजिकै छ बिहा पार्टीमा जाँदा पनि राम्रा गरगना छैनन् बनाउन पर्ने
8: बनाउला नि त फेरि सुन चाँदी जस्ता कुरा विश्वासिलो पसल पनि हेर्नु पर्यो नि
7: त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि हजुर हाम्रै सुन्दर नगरी चार नम्बरमा शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटे सुन चाँदी पसल खुलेको छ नि
8: त्यसो भए त जाम न त हामीसँग भएको पुरानो सुन पनि छ त्यो सुन पनि लगेर जाउँ है त्यही सुनसँग केही थप थाप गरी नयाँ सुन चाँदीका गर गहनाहरू बनाएर ल्याउला बरु त्यो सुन चाँदी पसल कहाँनिर छ कुन्नी
7: तौलिहावा रोड पश्चिम पट्टि एनसेल टावर भएको ठाउँमा
8: हजुर ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अर्डर अनुसार रेडीमेड गर गहनाहरू पनि तयार गरिनुको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि सट्टीपट्टी गरिन्छ दक्ष कालीगढबाट तपाईँले खोजे जस्ता आकर्षक डिजाइनका गर गहनाहरूको लागि एक पटक अवश्य हामीलाई सम्झिनुहोस् शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटी सुनचाँदी पसल तौलिहावा रोड पश्चिमपट्टि एनसेल टावर भएकै घरमा प्रोप्राइटर ओम गहतराज शुभचिन्तक लोक बहादुर नायरी मोबाइल 98215 90 00 95 98 75 56 095 र 98 174 52 311
9: यो युनाइटेड हस्पिटल यही होइन र भएको कहाँनिर साह्रै छ र बिरामी भएर बस्न खाना छैन हस्पिटल भेटिने होइन
10: ए दिदीले युनाइटेड हस्पिटल खोज्दै आउनु भएको यो त सरेर आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा गएको छ नि ल चार नम्बर चोकबाट अटो चढ्नुहोस् त्यसपछि तौलियावा रोड हुँदै 2 किलोमिटर अगाडि जानुहोस् त्यहाँनिर ठुलो बोर्डमा युनाइटेड हस्पिटल लेखिएको छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँको समस्याको समाधान भइहाल्छ नि अनि दिदी युनाइटेड पहिलाको जस्तो छैन नि अहिले त धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ तपाईँलाई जे समस्या भयो त्यसको विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुने भएकाले कुनै चिन्तै लिन पर्दैन
11: हजुर विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट चेक जाँच हुने जिल्लाकै सुविधा सम्पन्न एकमात्र अस्पताल युनाइटेड हस्पिटल बारगुङका चार ठाकुरापुर र झुङ्गाको बीचमा यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर सहित दैनिक ओपिडी सेवा पेट छाती मुटु तथा सुगर रोग विशेषज्ञ सेवा हाड जोड्ने सम्बन्धी हड्डी भाँचिएको रडहरू राख्ने निकाल्ने महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा मेजर अपरेशनहरू एपेन्डिसाइटिस पाठेघर फाल्ने हर्निया पित्त थैलीको ढुङ्गा निकाल्ने चिरेर बच्चा निकाल्ने लगायतका साना ठुला अपरेशन
10: 24 घण्टा सेवा उपलब्ध छ
11: नभुल्नुहोला
10: विस्तृत जानकारीको लागि युनाइटेड हस्पिटल फोन 076-550-200
12: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz
13: यति बेला रातिको 9 बज्यो